एस आदि फ्लाक खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: बसंत को माया लुहावा चलदा, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलदा। कसे कसे ले ती तो मीठो याद हरु ता दिए के होना है ना? हो ती याद हरु नहीं हुन कुछ समय रुमान छा दायो
1: आयो
0: पहचान सामने सिते
2: कुछ मेरुमान।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: यो किचन को डेकोरेशन देखे त खाना बनाने मन लगे मैं
2: हेर हेर भाड़ा सब फैंक नरिशाऊ न तिमी भकुंडे को बाबा फर्नीचर में तिमी खोजे जस्ते किचन डेकोरेशन बनाऊ गई हाल भैया।

देशैभरि सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटा कन्फ्युजन ग्याप द सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम ग्याप द सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम